निरंजन है गुरु नानक, धार के मूरत है जागे आयो। लोक सुनियो पर लोक सुनियो सिद्ध लोक सुनियो, सब दर्शन पायो संगत पारी उतारण काओ। गुरु नानक साहिब पंथ चलायो, वाहे गुरु गुरु नानक साहिब धार के मूरत है जागे आयो। नजरे रहमत से जिधर नानक इशारा कर दिया, जर्रे को सूरज किया कतरे को दरिया कर दिया। बन के साकी जाम किस ऐसे पिलाए आपने, हिंद की क्या बात थी जाहर दीवाना कर दिया। हिंदू मुस्लिम के मिटे झगड़े गड़े सब मिल गए, कुफरो ईमा एक जा काचियो काबा कर दिया। देंत से साधु बना सज्जन भी सज्जन हो गया, बंदों की तो बात क्या रीठा भी मीठा कर दिया। इसकी पट्टी में डालकर कुंदन किया और लहने को अंग लगा अंगत से अल्लाह कर दिया। साहिब गुरु नानक देव सचे पातशाह साहबां दे आलमाना सजे हुए दरबार दे विच महान गुरु साहिब जी दी अंश बंश, महान ब्रह्म ज्ञानी श्रोमणी श्री हजूर धन धन बाबा साहिब सिंह साहिब जी बेदी साहिब जी दे पवित्र स्थान दे उत्ते जुड़ बैठे सज बैठे।

तीर बाबा जी ने खिच के सी छड़िया खान सुटिया घोड़े तो पटका के ओ मोरा वाली सिर वड्या करोड़ के एन चंगी तरह मुटो सिंगा तौले दा तौला खड़का के चंगी तरह खड़का करके एन एन करोड़ के वड्या सिंगा ने जेदा भी सिर वड्या ना करोड़ के वड्या मसा रंगड़ उन पापी ने जब बेअदबी की गुरु दरबार की कहर ताया एक शायर कहता उन्हें बेसवा नहीं ने चाहिए उसकी मौत नची वो मौत जेडी नचती से उन्हें चार लाइना कही और कहता जी जागे तरकर सही थे बोलते मरदंग संगले फले फले नखरे से नाचती ने चलिया जागते तो सही थे बोलते मरदंग संग लफले फले नखरे से नाचती ने चलिया चुमक चुमक चुम चुम चुम छाना नाना जागना ना कौन गुरु जब पाके सह बंदा या लमक लमक लिटाओ ठो से ने और आ करे जिया तड़फाए लागी माथे की बंदैया कहे कभी बालमो मसही की मौत नाचे पे जी रगड़ाए लिफ गाती जो गवैया सिंह चल गए तैयार हो गए ये दो दिया जोड़िया अज तई बनिया सिंगा दिया अज तई जालमान दुष्टा नु गड्डी चाड़ दे रहे चल गए ना मुंह बने हुए क्योंकि हनेरी बड़ी चलती सी कहंदे अंदर जाना ते पैरे ते खड़ा सी देना कहंदा इदा कसा अंदर जाना वो कहंदे जाना अंदर वो साडा यार है उन्हू मिलना जाके जदे गल आखी ना कहंदा कौन हो तुसी नंबरदार पति दे मामला तारना आया माया बड़ी लैके आया असि का जनाब नू बड़ी लोड़ होनी है भी जाइए नाले घुट के गल बकड़ी पा के मिले आइए उन्हू मिलना आया कहना माया ले आयो बड़ी कहते फिर मुंह ना सारी दे मेरे लिए भी गफा रख लियो थोड़ा बहुता बाबा सुखा सिंह महताब सिंह दोए ना ये दोए जने कहते कहते भी तेरे ना वादा रहा मित्रा इतने खड़ा रही जे इतने खड़ा रहेंगे ना तो तेरा हिसाब तेनू ही देके जावे ओनू नहीं देंगे ये तेरे ना साडा वादा रहा सिंह तुर पे अंदर नू छुट्टियां थैलियां पलंग के थले उर्दू के चौंके की तरह होया मूटा तो सुखा सिंह ने किया इशारा कहता हूं कि महताब सिंह फिर चोले के थले ना ठंडा पाया होया चोले के थले कहते उन्हें ताड़िया होया काल फिर चोले चो मसे रंगड़ दी धौन से ठंडा छड़िया उस पापी का सिर वड्या फेर करोड़ के एन मुट तो कटिया एन मुटो सिर कढ़ दिता तो जो ना इदा मारियो दे जोर दी बजा ठंडा ते मुरे गवैये गाउंदे सी एक सरंगी वाला एक तबले वाला एक बाजे वाला वो जो ऐदा मारी ना वो जिम्मे सिद्धो की खुंडी की बनती है वो ऐदा बजा तो सिर उलर के तबले वाले की गोच छा देगा जो डिगा ना वो हाथ जहा फेरी जाए इदा सिर के उत्ते कंजा जहा सिर जिदा वो करेला घरोड़िया नहीं हों घोटिया हों बीबिया ने ऐदा तो वह सिर हाथ फेरी जाए नाल कहता बजा नहीं वाए वो बजा ही ना वो डर गया बहुते कहता बजा नहीं कहता बजावा कि मेरा तो सिर ही बज गया तेनों नहीं दसता सिर गोच पिया आखी जाना बजा बड़ा तेन राग चढ़े आया वो कहता तेरा नहीं बड होया तो चौधरी का है मसे का वो कहता फिर आप करिए कहता करना की कच्छे मार तबला तो भज चल वो गफा बरताई जाते आओ इधर नु जे खंडा चल गया बच्चे भुखे मर जाएंगे तुर पा वो तुर पे भज उठे जो भजे आ ना वो जोड़ा पहरेदार से दीना कहता वे कमलियो अज ते चार छिलड़ बनने से थोड़े वो गए आ नंबरदार माया लैके चौधरी ने शराब ना रज के गफा देना सी वो कहता बस बस चौधरी ने की देना नंबरदारा ही देता सानू गफा वो गफा लैके ही आए तू भी लैके जाई उदा ना चलिया जाए कि इतने खड़ा रही उधरों सिंह निकले फिर टंगया होया ने दीने ने वेख्या भी आ कि भाणा वरत गया ये तो चौधरी साहब का ही सिर लगता भज पिया सुखा सिंह कहता ठहर जा पैरेदारा अपना हिस्सा ते ले जा

बचरे शरिया तिन कवन खलावे कवन जगावे मन मह सिमरन करिया सब निधान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए।

वचन कुरबाण। हर ध्यावे हैं हर ध्यावे तुद जी, से जान जुग में सुखवासी। से मुक्त भय जन हर ध्याया जी, तैन टूटी जम की फांसी। जैन निरपौ जन हर निरपौ त्याया जी, तन का पौ सब गवासी। जन सेव्या मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी।

अपना जान करो व्रत पार। हमरे दोष्ट सब तुम कावहो, आप हाथ दे मोहे बचावहो। सुखी वसै मोरो परिवार, सेवक सिख सब करतार। मोर अच्छा निज कर दे करे आए, सब बैरन कौ आज संघरे आए। पूर्ण होई हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम है शाड़ कोई अबर ना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सतर हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उभरे आए, मरण काल का त्रास निवरे आए।

ताहि हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जसन उपजायो आदि अंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तसी को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सदरन को बल मोह बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाई साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के बट बट की जाने जब उद करख करा कर तारा प्रजा तरत तब दी अपारा जब या कर खे करत हो कब हूँ तुम मैं मिलता दे तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी बूझो चारे तुम सब ही तेरे तन रालम जानत भेद भेद अरे आलम

ऐति तुमरा लखा न जाई पसारा केह बिद सजा प्रथम संसार एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कहीं भूपा अंडज जे रज से

सगरी श्रेष्ठ दिखाई अचंपव आदि जुगाद स्वरूप स्वयंपव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार्या सिख संग्रो दोष जिते उठव।

निकट नहीं आए। रक्षा हुई ताहीं सब काला, दुष्ट अरिष्ट डरें तत्काला। कृपा दृष्ट धन जाहिं हरिहु, दाके ताप धन कमो हरिहु। रिद्ध सिद्ध कर्मों सब होई, दुष्ट शाह स्व सकै न कोई।

गण मान्यो। सिमरत शास्त्र भेद सब बहु भेद कहे हम एक न जाने। सरी असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तो है बखाने। दोहरा

अंगीकार करे तेरा कार्य सब सुवारना। सब ना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो बिसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं करते रहे, करत

रहे। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आय वसया, जिन इच्छा सब पजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु बिटो, जिस दिया ए वडियाइया, कह नानक सुनो संतो सब धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द दत कर सभागे, कर सभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया, पंच दूत तो दवस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे, कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे, आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पहे सरसे पूरे गुर ते जानी, सुनते

खोवै आपना चीनस ब्रह्म ब्रह्म रोवै कहतो पढ़तो सुनतो एक धीरज धर्म धरणी धर टेक जात सात सा

क्षमा करना आजकल सिख से कहना जी नित्यनेम करना जरूरी है, चाह है ही नहीं, गुरु का हुक्म मनन का चाह ही नहीं है। कहता जो छुट्टी मिल जाए तो चंगी गल, पर करे ये भी पूछा जी भी खाना जरूरी है ना खाओ। भाई इसे तरह नित्यनेम भी जरूरी है, गुरु की संगत विच आना भी जरूरी है। तो जिन्हों समझ आ गई फिर मन चाहो भया, उसके मन में चाह पैदा। तो याद रखो जिहड़ियां चार लावां हन साडी बदकिस्मती है, इन्ना वड्डा खजाना साडे कोल है। जदों बच्ची बच्चे का आनंद कार्ज होण लगदा ते उदों आके माता पिता चाहे लड़के वाले होण चाहे लड़की वाले होण भाई साहब के कन्न च कहण जी भाई साहब जरा छेती कर दिओ, ना नचदियां छेती करदे ने, ना घरों तुरदियां छेती करदे ने, ना तैयार हुंदियां छेती, कदे नहीं छेती, उत्थे आके छेती हो जाती। फिर वो जिहड़ियां चार लावां जिन्हां ने सारी जिंदगी उस बच्ची बच्चे की अगवाई करनी है वो सुन भी तैयार, विचार करनी तो दूर की गल रह गई। उहदे च हर गल समझाई है महाराज, हर पहलड़ी लाम प्रवृत्ति करम दृढ़ आया बलराम जीओ, बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो, पाप त्याया बलराम जीओ, धर्म दृढ़ो हर नाम से आवो सिमरत नाम दृढ़ आया, सतगुर गुर पूरा आराधो सब किलिमुख पाप गवाया, सहज आनंद होवा वडभागी। कैसा सुंदर उपदेश है। फिर दूजे विच पातशाह ने कहा हर दूजड़ी लाम सतगुरु पुरख मिलाया बलराम जी, निर्भो भय मन होए होमे महल गवाया बलराम जी। याद रखो जब तक असी बाणी की विचार नहीं करते अनेरे विच ही ठोकरां खांदे रहांगे। तो आओ पातशाह कहने जिन्हों गल समझ आ गई मन चाओ भया, प्रभ आगम सुनिया सुनिया मिल गया कि हुण तू ठीक रस्ते चल पे, हुण तू रसना नू होर रसां तो रोक लिया, हुण तू शरीर नू चंगे पासे ला लिया। प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी, हुण सखी आ सतसंगी सहेलियां लई भी वरत्या बहुत चक, आवो भैणे गल मिले मेरी अंक सहेलड़ियां, मिलकर करें कहानियां समृत कंत की। त्याजरियां साडियां इंद्रियां ने यह भी सहेलियां ने, जे तुसी गुरु की संगत में आके बैठे हो, जे कन्न बाहर दियां आवाजां सुनते रहन, अखां आउण वालियां नूं वेखते रहन कौन आया है किसने मत्था टेकिया यदि पग कहो जी यदा दुपट्टा कहो जी उन्होंने साथ ही नहीं दिता है, इन्हां सारियां इंद्रियां नूं कठियां कर ते की कहना है हर मंगल गाओ सखी। गृह मंदिर बनया हुण मेरा घर हिरदा मंदिर बन गया, हुण उस परमेश्वर का आसान टिकाणा बन गया। हर गाओ मंगल नित सखीए, सखीए सहेलीए, हे मेरी ओ इंद्रियो ये कम नेता प्रति करना करो, बाणी पढ़न ते विचारन दा फिर की होवेगा, सोग दुख ना व्यापे, ना कदे चिंता व्यापेगी ना कदे दुख व्यापेगा।

इन्हें लंबी लिस्ट ला देती, मैं इन्हें कोठियां बनाइया, इन्हें कारा, इन्हें किले, ये वो कर। और महाराज कहने ने जिन हर तेरा रचन रचया, जिन दे नन्ने नू सारी है, ये बोली नहीं जाएगी। क्षमा करना, एक वीर जी नाराज होके फोन कर रहे ने, तुझी सारियां हटा रहे हो? अरे मैं हटा नहीं रहा, मेरी की समर्थ है? जे गुरु ने लाई मैं किवें धावगा? मैं ते दस रहा पछेत्र बोली इस परमात्मा ने जिस हरि ने तेरा रचन रचया, सो हर मन ना बसाया। जिस परमात्मा ने तेरी रचना रची है तेनु सब कुछ दिता। जे कोई गुरु ग्रंथ साहब जी दे सारे उपदेश का निचोड़ जानना चाहे,

रहे जय जीवन जीया। बस जिन्हें तेनू सब कुछ दिता उन्हू ना पर जे तू ओन याद नहीं किया जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन ना वसाया। जे तू वो नहीं मन में वसाया तू कख भी नहीं किया। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने एक जगह बड़ा सुंदर समझाया। लोग कह लगे महाराज सिमरन करने की सानू महत्ता दसो भी सिमरन क्यों जरूरी है। तो गुरु नानक पातशाह ने कहा लियाओ एक सलेट लियाओ एक सलेटी लियाओ सलेटी के नाल सलेट के उत्ते सिफर के निशान पाओ। एक दो तीन चार निशान पाते कदे दसो की लिखे कदे जी सिफरे लिखे ने क्योंकि तुम सहमत हो सारे इस गल ना। पातशाह कहते हूं एका लिखो एका लिखदियां सार हर सिफरे की कीमत दस गुणा हो गई। भाई नहीं गल है आ जितने काम असं कर रहे हैं अवर काज तेरे किते न काम अवर काज तेरे किते न काम मिल साध संगत भज केवल ना मिल साध संगत भज केवल ना मिल तो आख्या जिन्हां ते गुरु की कृपा हो कृपा किवें होवेगी जे गुरु का वचन मनांगे बस जे नहीं वचन मनांगे तो फिर गुरु नूं की दोष डॉक्टर को दवाई भी ले आओ ते खाओ ही ना ते डॉक्टर का की कसूर है। जे खा लो ते परहेज ही ना करो राती बोतल भी खोल लो एन पाठ भी कर लिया जी बोतल भी खोल ली फिर की बन जाएगा कुछ भी नहीं। गुरु ते कृपा करनी तैयार है असी कराउनी तैयार नहीं है। गुरप्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखया पाया फिर यह भी नहीं कहना कि मैं किया है उसकी कृपा हुई है उन्हें बख्श की है। जे कह नानक ए शरीर परवान होवा इनू एहो नहीं कहना ए शरीर ए फिर मनुखा शरीर कबूल पै गया लेखे लगया जिन सतगुर स्यों चित लाया जिन्हां प्यारियां ने सतगुरु दे नाल चित लाया। चित लाउण दा मतलब गुरु जी सिख

जग में है, हर बिना अवर न देखो कोई, ए नेत्रो मेरे हो, हे मेरी अखो, हरी ने तुहाडे विच जोत तरी, आ जिहड़ी वेखण दी शक्ति है ये किसने तरी है, इहनू असीं आप ही बिगाड़दे हां, आप ही गवाउंदे हां, आप ही सब कुछ करदे। पर पातशाह ने तो बड़ी सुंदर अखां दित्तियां ने, इन्हां विच वेखण दी शक्ति दित्ती, ए नेत्रो मेरे हो, हर तुम मैं जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन ते रुकना है, हर बिन अवर न देखो कोई। पर असीं इन अखां नाल की कुछ करते हैं, की कुछ वेखते हैं, जरा ध्यान मारो। मैं लंबी लिस्ट सुनावा तो टाइम लग जाएगा, असीं बहुत गलत करते हैं अखां नाल। अखां दी ड्यूटी वेखनी है, वेखो।

233 प्राणी गुरु के जहाज चढ़े बड़े बड़े सिंह बड़े सिंह ने बड़िया सिंघणियां ने बड़े वीर भरा ऐसे हैं जेड़े दिन रात इस वास्ते कमर कसे करी फिरदन कि असि अपनी जिंदगी विच एक दो चार नू गुरु ग्रंथ साहब नाल जोड़ लो। हर संग्राम से जिथे संगत लैके आउणगे ट्राली वहीकल अपने कोलों खर्चा करके दसवंध की माया जे इदां दे खर्चे ते भी लग जाए तो कोई नहीं, दसवंध की माया तेल पवाउण ते गड्डी किराए ते करन ते भी लगे ते माड़ी गल नहीं हुंदी, संगत नू लैके जाणा है दसवंध कढ़णा। कई सज्जण इदां दे वीर जिहड़े होरां संगतां नू प्रेर के एक दो लैके जाइए संग्राम ते अमृत छकिया होरां नू अमृत छकाउण वास्ते प्रेरित करदे ने नाल लैके आउंदे ने। जिथे अमृत छकण वाले वधाई दे पात्र ने उत्थे छकाउण वाले भी वधाई दे पात्र। ते मैं बेनती करांगा, मैं वेखना चाहुंदा भी अमृतधारी संगत साड़ी संगत विच किन्नी क बैठी, सारे बावां खड़ियां ओ करन जिन्हां ने खंडे बाटे दा अमृत छकिया होया, जिन्हां ने अमृत छकिया है सारे ही ने थोड़े जे होणगे बहुत बहुत बहुत वधाई। मैं कैमरे वाला जरा करियो बावां खड़ियां सारे करी, जिहड़े अमृतधारी सारे

वापस ओनू भी मेरा सुने आते हो और नहीं ना याद कीड़ा तू देखू गोविंद सिंह भी कहते होंगे जगते आओ तू कला ही याद नहीं करता मैंने लो मैनू मेरा भी सुने आते हो ये कभी मिलया नहीं मेरे मत्थे नहीं लगा पर प्यार मेरा भी बड़ा है देखो भाई कई साल साल नहीं मिलते पर अंदरली तार खड़कती रही कई हर वेले कोल रहिंदे ने पर अंदरों बहुत दूर होंदे ने खाली।

और सतनाम करता पुरख निरपाव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी शैतान गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच कहाँ तुच्छ प्रभ बुद्ध हमारी वर्णन सके महिमा जो तुम्हारी तो

हरि जियो पिंड सब तेरा कह नानक सब तेरी वडियाई कोई नाम न जाने मेरा कह नानक सब तेरी वडियाई

0: केळबोधी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CIFK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम स्लेप तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नू पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

सेव जे मृतक को चंदन चढ़ावे उसते कहो कवन फल पावे। जे मृतक को बिस्ता माही रुलाई ता मृतक का क्या काट जाई। कहत कबीर हो कहो पकार समझ देख साकत गावार। दूजे पाए बहुत कर गाले राम भगत है सदा सुखाले। जल मह मीन माया के बेदे दीपक पतंग माया के छेदे। काम माया कुंचर को व्यापे पयंगम प्रिंग माया मह खापे। माया ऐसी मोहनी पाई जेते जी तेते दहकाई। रहाओ पंखी मृग माया मह राती साकर माखी अधिक संतापे। तुरे उष्ट माया मह पीला सिद्ध चौरासी ही माया मह खेला। से जति माया के बंदा नवे नाथ सूरज अरचंदा। तपे रखी सर माया मह सूता माया मह काल अर पंच दूता। स्वान स्याल माया मह राता बंतर चीते अर सिंगाता। मां जार गाडर अर लूंभरा बिरख मूल माया मह परा। माया अंतर पीने देव सागर इंद्रा अर तर देव। कह कबीर जिस

का पाई, दूवर कोट अर तेवर खाई, रहाउ पांच पचीस मोह मद मत्सर, आडी पर बल माया, जान गरीब को जोर ना पहुंचे, कहां करो रघुराया, काम कवारी दुख सुख दरवानी, पाप पुन दरवाजा, क्रोध प्रधान महाबड़ दुंदर, तह मन मावासी राजा, स्वाद सुनाहा टोप ममता को, कबुद्ध कमान चढ़ाई, तिशना तीर रहे काट पीतर, यों गाड़ लियो ना जाई, प्रेम पलीता सुरत हवाई, गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अगन सहजे पर जाली, एक है चोट सजाया, सत संतोख ले लरने लागा, तोरे दुए दरवाजा, साध संगत अर गुर की कृपा ते, पकरियो गढ़ को राजा, भगवत पीर सकत सिमरन की, कटी काल पै फासी, दास कमीर चढ़ियो गढ़ ऊपर, राज लियो अबनासी, गंगा गुसाइन गहर गंभीर, जंजीर बांध कर खरे कबीर, मन ना डिगे तन काहे को डराए, चरण कमल चित रहे ओ स

अनहद शब्द होत चुनकार, जे पौड़े प्रभ श्री गोपाल, खंडल मंडल मंडल मंडा, त्रया स्थान तीन त्रया खंडा, अगम अगोचर रहया अभ्यंत, पार ना पावे को तरनी तर मंत, कदली पोहप धूप परगास, रस पंकज महलियो निवास, द्वादश दल अब अंतर मंत, जह पौड़े श्री कमला कंत, अर्ध उर्ध

जोत मंत्र मन अस्थिर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे, कोट सूर जाके परगास, कोट महादेव अर कबलास, दुर्गा कोट जाके मर्दन करे।

फिरह बासक कोट सेज बिस्थर है समुंद कोट जाके पानी हार रमावल कोट अठारह पार कोट कमेर परह पंडार कोटक लक्ष्मी करह सिंगार कोटक पाप पुन बहो हिरह इंद्र कोट जाके सेवा करह छप्पन कोट जा

बार गंधर्व कोट करह जयकार विद्या कोट सब गुण कह तऊ पार ब्रह्म का अंत ना लह बामन कोट जा कर मावली रामन सेना जहते चली सहस कोट बहु कहत पुराण दुर्योधन का मथया मान कंदरप कोट जा कह लवे ना तरह अंतर अंतर मन साहर है कह कबीर सुन सारग पान देह अपै पद मांगो दान पैरों बाणी नाम देओ जियो की घर पहला

एक ना पूजस नामे हरि प्रणवै नाम देव एहो करना अनंत रूप तेरे नारायणा पर धन पर दारा पर हरि ताके निकट बसै नर हरि जो ना पजंते नारायणा तिनका मैं ना करूं दर्शना रहाऊ जिनके भीतर है अंतरा जैसे पास तैसे हुए नरा प्रणवत नाम देव ना कह बिना ना सो है 32 लखना।

मेरो मन पतियाए, नाहीं ता घर को बाप रसाए रहाओ। स्वयं कटोरी अमृत भरी, लैना मैं हर आगे तरी। एक भगत मेरे हृदय बसे, नामे देख नारायण हसे। दूध पियाए भगत घर गया, नामे हर का दर्शन पया। मैं बौरी मेरा राम पतार, रच रच ता को करो श्रृंगार। भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग।

कबहू खीर खांड की हो ना पावे, कबहू घर घर टूक मगावे, कबहू कूर्ण चने बनावे, ज्यो राम राखे त्यों रही है रे भाई, हर की महिमा।

अस जाके मस्तक लिखियो कर्मा सो भज पर है गुर की सरना कहत नाम देओ एहो बिचार इन बिद संत हो तरो पार संडा मरका जाए पुकारी पड़े नहीं हम ही पाचहारी राम कह करताल बुझावे चटिया सबै बिगारी राम नामा जप।

बादशाह चढ़ियो अहंकार, गज हस्ती दीनो चमकार, रुदन करे नामे की माए, छोड़ राम की ना पजै खुदाई, ना हो तेरा पूंगड़ा ना तू मेरी माए, पिंड पड़े तो हर गुण गाए।

इन हिंदू मेरा मलया मान, बादशाह बेनती सुने हो, नामे सर पर सोना ले हो, माल ले हो तो दोजक पर हो, दीन छोड़ दुनिया को परो, पाम हो बेड़ी हाथ हो ताल, नामा गावे गुण गोपाल, गंग जमन जो उल्टी बह, तो नामा हर करता रह, सात घड़ी जब बीती सुनी, अजहो ना आयो त्रे पवन तनी, पाखन तन बाज बजायला, गरुड़ चढ़े गोविंद आयला, अपने भगत पर की प्रतपाल, गरुड़ चढ़े आए गोपाल, कह ता धरन अकोडी करो, कह ता लेकर ऊपर।

आगे तरी बादशाह महल में जाए औकट की कट लागी आए काजी मुल्ला बिनती फरमाए।

देवता बैकुंठ तरै, जो गुर देवता जीवत मरै। सत सत सत सत सत गुरदेव, झूठ झूठ झूठ झूठ आन सब सेव रहाउ। जो गुरदेव ता नाम दिरडावै, जो गुरदेव ना दह दिस तावै। जो गुरदेव पंच ते दूर, जो गुरदेव ना मरगो चूर।

कंद नहीं हिरे, जो गुरदेव देहुरा फिरे, जो गुरदेव ता शापर शाही, जो गुरदेव सहज निकसाई, जो गुरदेव ता अठ सठ नाया।

भोजन करे जो गुरुदेव ता जन्म ना मरे जो गुरुदेव अठ दस व्यवहार जो गुरुदेव अठारह भार बिन गुरुदेव।

सब संत पर पड़ चित संभाल सोए सदा सदा गोविंद भोलिया हूं मैं सुरत वसार हूं मैं मार विचार मन गुण विच गुण लै सार रहा कर्म पेड़ साखा हरी धर्म फुल फल ज्ञान पत परापत शाम घनी चूका मन अभमान अखी कुदरत कन्नी बाणी मुख आखन सच नाम पत का धन पूरा हुआ लागा सहज ध्यान महारुती आवना वेखो कर्म कमाए नानक हरे ना सूके जे गुरमुख रहे समाए महला पहला बसंत रुत आई ले सरस बसंत माए रंग राते रवै से तेरह चाए किस पूज चढ़ावो लगो पाए तेरे दासन दासा कहो राय जग जीवन जुगत

पाए, जाम ना भीजै साच नाए रहाउ। दस अठ लिखे होवे पास, चारे वेद मुखागर पाठ, पुरबी नावे वरना की दात, वर्त नेम करे दिन रात, काजी मुल्ला होवे सेख, जोगी जंगम भगवे भेख, को गिरही कर्मा की संद, बिन बूजे सब खड़ियस बंद, जेते जी लिखी सिरकार, करनी ऊपर होवग सार, हुक्म करह मूर्ख गावार, नानक साचे के सिफत भंडार, बसंत महला तीजा, बस्तर उतार दिगंबर होग, जटा भार क्या कमावै जोग, मन निर्मल नहीं दसवै द्वार, भ्रम भ्रम आवै मूड़ा वारो वार, एक त्यावो मूड़।

पाखंड दृष्ट मन कपट कमाहे तिनकै रमैया नेड़ नाही जे को ऐसा संजमी होए क्रिया वसेख पूजा करे अंतर लोभ

नदर करे ता भरम चुकाए, हुक्म बूझे ता साचा पाए। जिस जियो अंतर मैला होए, तीर्थ भवै दसंतर लोए। नानक मिलिया सतगुर संग, तौ भवजल के तूट सुबंध। बसंत

परम पद पाए। इससे ऊपर नहीं विचार, जा के मन बसया निरंकार। बंधन तो भय निर्वैर,

हर प्रभ आपे मिले। जिन अंतर हर हर प्रीत है, ते जन सुगड़ते आने राम राजे। जे पारों पुल सुख बोल दे, की करे हर

लोक महला पहला जे मोहा का कर्म है कर्म है पितरी देश वडिया हाथ दलाल के मुर्ती करे नानक अग सो मिले खटे करे दे ज्यू जोरू सिर ना बनी आवे वारू बा झूठे झूठा मुक्त

जर आई जो बनहारिया, जर आई जो बन जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो तो स्थान सो हवा राम राजे तो प्राण सो हवा राम।

कर हुकम मस्तक हाथ सारे। कर हुकम मस्तक हाथ सारे विचों मार कड़िया। मैं तो छह

सब अकुल निरंजन दीखा, सब अकुल निरंजन दीखा, सब अकुल निरंजन दीखा, सब अकुल निरंजन। गुर सिखा मन हर प्रीत।

समान बधाया। श्लोक महला पहला, नानक फिक्का बोलिया तन मन फिक्का हो, फिक्को फिक्का सर्दी है, फिक्का दरगे सटी है, मुँह थुक्का फिक्के पाए। अंदरों झूठे

कर नित जप हर नाम हर नाम कर। लोक महला दूजा एक नहीं आस की दूजा लग जाए चंगे चंगा का।

मन्ने की गत कही न जाए, जे को कह पिछे पछताए, कागद कलम न लिखण हार, मन्ने काबे करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने सुरत होवै मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की शुद्ध, मन्ने मुँह झूठा न खाए, मन्ने जम कै साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पात स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग्न चले पंथ, मन्ने धर्म से दीसन बंद, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए।

अंतर्गत तीर्थ मल नहाओ। सब गुण तेरे मनाही कोवे बिन गुण कीते भगत न होए। सुवास्त आदि बाणी वरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ। कवण सुबेला भक्त कवण कवण थित कवण वार कवण सिरुति महा कवण जित वाकारू। बेल न पाइया पंडती जे हुआ लेख पुराण वक्त न पायो कादियां जे लिखण लेख पुराण। थित वार न जोगी जाने रुत मा न कोई जा करता सिर ठीक साजे आपे जाने सोई। किव कर आखा किव सलाही क्यों वरनी किव जाना नानक आखण सब को आख एक दू एक सियाणा। वड्डा साहिब वड्डी नाही कीता जा का होवै नानक जे को आप जाना अगे गया ना सोए। पाताला पाताल लख आकाश आकाश ओड़ कोड़ गोपाल दके वेद कह निकवात सहस अठारह कहनक देव।

गज बगाई उथ पाए नानक गया जप जाए। धर्म खंड का हो धर्म ज्ञान खंड का खो कर्म गेते पवन पाणी बसंतर गेते गान महेश गेते ब्रह्म घाट घड़ी है रूप रंग के वेश खेतियां कर्म भूमि मेर गेते गेते तू उपदेश गेते अंध चंद सूर गेते गेते मंडल देश गेते सद बुद्ध नाथ गेते गेते देवी वेश केते देवदान मुन केते रतन समुंद गेतियां खाणी गेतियां बाणी गेते बात नरेंद गेतियां सुरती सेव केते नानक अंत नयंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड जिथे नाद विनोद गोड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप जिथे काढ़ कड़िए बहुत अनूप ता किया गलां कथिया न जाही जी को कहे पिछे बसदाई जिथे कड़िए सुरत मत मन बुद्ध जिथे कड़िए सुरसदा की।

तिथा सीतो सीता मह माहे ताके रूप न कथने जाहि नाहु मरहे न ठग जाहि जिनक राम बस मरमाहे। तिथा भगत बस कहलो करहे आनंद सच्चा मन सोई सच खंड बस निरंकारू कर कर विख नजर निहाल। तिथा खंड मंडल पर पांडव जी को कथा दंत नयंत तिथा लो लो आकार जिव जिव हुक्म दिव दिवकार विख विकसय कर विचार।

प्रचांड मृतगा अखंड लिशा कर्म दृश्य धर्म सर्वा प्रणाड्या अण जंड भाड्या जाजरी छंद तक प्रसाद गोबिंदे मकंदे उदारिय पारी हरियंग करियंग नामे कामे भजंग प्रयात छंद गोविंद चाचरी छंद तक प्रसाद गोबिंदे मकंदे उदारिय पारी हरियंग करियंग नामे कामे भजंग प्रयात छंद चदर जकर करता चदर जकर हरता चदर जकर दाने चदर जकर जाने चदर जकर वरती चदर जकर भरती चदर जकर पाले चदर जकर काले चदर जकर पासे चदर जकर वासे चतर जकर माने चतर जकर दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न ब्रह्म न पितर न कर्म न काय जन्म न जाय ना चित्र न मित्र पर पवित्र प्रतिशा दिशा दृशा कृष्ण भगवती शांत प्रसाद कथते क्या सच देशा क्या बिज बेसा क्या गंज कर्म क्या पंच भरम क्या बिज लोक क्या दत्त शोक क्या अवधूत वर्ण है क्या विभूत करण है कि राजंग प्रवाह के धर्म तुझाए क्या शोक वर्ण है कि सर्वा वर्ण है कि जगदंग रतियाँ कि शतरंग सदी क्षत्रिय हैं कि ब्रह्म स्वरूप है ज्ञान पानुप है कि आदि देव हैं कि आप भेवाएं कि शतरंग भिन्न है कि कह दीन है कि रोजी रिहा कर ही मेरे हा कहे कि पाक भेव है कि गैबुल गैब है कि आप बोल गुना है कि शान शाह है कि कारण गुनंद है कि रोजी रहना है के राज करीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र माने हैं के सर्वत्र दाने हैं के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पावन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीना है के सर्वत्र लीना है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देशा के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है

के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र माने हैं सदैव प्रधान है के सर्वत्र जापे आए के सर्वत्र थापे आए के सर्वत्र पान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंगली मैं के परमंग भी मैं के आकुलला मैं के साहब कला मैं के हुसन वजू है तमाम रजू है मेसल सलाम है इसलिए खत्म दाम है गरीब लसकासा गरीब लो बरासता है बलंदर मकान है जमीन ओ जमान है तमीज ओ तमान है रजू ओ नदान है हरी फुल जी मर जाग जगी नानी गुल दरंग है बेद है बांग है जी जल नवाज है गरीब लखराज है निरुक्त स्वरूप है धर्मुक्त बभूत है प्रभुक्त प्रवाह है सजोग सुधा है सदैव स्वरूप है बेदी अनूप है समाज तो विराज है सदा सर्वसाज है समाज तो सलाम है सदैव काम है इंद्रवाद स्वरूप है गाद अनूप है अवंगाद रूप है नाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिपर्गं त्रिभादे गंजे गादे शुभं सर्वभाग्य सर्वानुरागे त्रिपुग स्वरूप है सजय सूत है किनर्कं प्रणास है पृथ्वील प्रवास है निरुक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभक्त स्वरूप है प्रजोक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रजोक्त अनूप है जाजरी शंब अपंग है नंग है बेखा लेख है परम है कर्म है नाद अजगाद है अजय है भय भूत है दूत है नाश उदास दंत है बंध है अभगत है विरक्त है नाश है प्रकाश है।

জলধর মাণ্ডু দেশ বেশ পাণ্ডু জলধর মহান্ত দেশ বেশ বেয়ন্ত অনপবন আশুদ্রদ্রাসন বাহ্যাদু কথনীয় নাদু কলকণ্ড কালু গুর্বর কালু কর কর প্রণাম জজ্জর্ণ নাম আনশিজ গাত অজিজন বাত অঞ্জ গাত অন্দরঞ্জ বাত অন্টুট পুণ্ডার অন্ঠট বার অডীঠ ধর্ম অদীঠ কর্ম অনব্রণনন্ত দাতা মহন্ত हार बोल मना छंद प्रसाद करुणालय है अरकाल है कलखंडन है मैं मंडन है जगदीश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है कृत के धरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वं पर है सर्वेश्वर है जगदेश्वर है ब्रह्मंड है कलखंड है भरते पर है करुणा कर है जप जप धप धप है कृता कृत मृत मृत मृत मृत करुणा कृत कृता कृत धरणी धृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत मृत मृत है अजप कृत मृत मृत है निर्नायक है खलकायक है विश्वंबर है करुणालय है।

अंधकारी नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राजम सिंह शांत रूपे नमो ब्रह्म तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्री नमो ध्यान ध्याने

श्री जय प्रभु देव जाप करी मैं हरि अंग करी अंग करी रही मैं चतर चक्र भारती चतर चक्र भुगते सुयाम पव सुभंग सर्वदा सर्व जुगते दुकाल अंग प्रणासी दयाल अंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग अंग भूते चतर चक्र भारती चतर चक्र भुगते सुयाम पव सुभंग सर्व

मातेम दंगनमान मलायेंगे सरी पद सरी भगवान कृपा बेन ते आग्निहान दान चलेंगे वीरापार बड़े बरियार बचारे सारगितार बिशैया तोरत देश मलंद मवासन माते जानक मान मलैया गाड़ी गड़ान को तोड़ नहार सुबह जग जा।

कौशिक गुण सुख दियो लदरन को बल मोबल कियो गड़गड़ के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी दे गुंजरिया सूला सबर कृपा दृढ़ कर फूला संतन दुख पाए दे दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने।

हाँ कौ कृपा हर अनुमानत महामूड कश वेदना जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीण तन है पैव आप अपनी बुद्ध है जेती।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माई सतगुरु न पाया सतगुरु तां पाया सहज सेधी मन बजियां बधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावणे आई।

करे तेरा कार्य सब सुवारना सब ना गल्ला समरथ स्वामी सुख मनो विसारी कहे नानक मन मेरे सदा रहो अरनाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सरण अंगीकार करे तेरा कार्य सब सुवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सुख मनो विसारी कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं करती रहे करता तेरा सब कुछ है।

आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा कर प्यारिया कर कृपा कर बगल वे कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरो जिन का मोह टुटा तिन का शब्द सच्चा सुवारिया कह नानक आनंद है आनंद गुरु ते जानिया बाबा जिस तू दे सुई जन पावे पावे तो सुई आंदे जिसन और क्या करे बिचारिया एक परम भूले फिरे दे दिस एक नाम लाग सुवारिया गुर प्रसादी मन पया निर्मल जिन्ना पाणा पावे।

संत प्यारे हो अकथ की करें कहानी, करें कहानी अकथ गेरी गित द्वारे पाई है। तन मन तन सब सौ गुर कहो कमन्या पाई है। हुकम गुरु के रह गावो सच्ची बाणी, कह नानक सुनो संतो कथे कथ कहानी। ए मन चांचला चतराई गिनै ना पाया, चतराई ना पाया गिनै तू सुन मन मेरिया। हे माया मोहनी जिन एत परम पलाया, माया ता मोहनी तनै कीती जन ठगोली पाईया। कुर्बान कीता ते सब

कहे नानक गुर प्रसादी साहिब बजाए सह साहिब जाए। जियो मैले बारो निर्मल जियो त मैले तिन्नि जन्म जुए हारिया। ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया विदावे नाम उत्तम सोषणे नाही फिर जो बेतालिया। कहे नानक जन सच तरिया कूड़े लागे तिन्नि जन्म जुए हारिया। जियो निर्मल बारो निर्मल बारो त निर्मल जियो निर्मल सतगुर दे करणी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचे नाही मनसा सच समाणी जन्म रतन जिन खटिया पड़े से बणजारे। कहे नानक जन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले। जे को सिख गुरु से सन्मुख होवै होवै तो सन्मुख से कोई जीव रहे गुरु नाले। गुर के चरण हृदय त्याई अंतर आत्मा है संभाले। आप छट सदा रहे परणे गुरु बिन वरन जाने कोई। कहे नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए। जे को गुरदे वे मुख होवै बिन सतगुर मुक्त न पावे पावे मुक्त न होर से कोई। पुछ वे किया जाई अनेक जोनी भरमे आवे बिन सतगुर मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी।

इस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तो दिशरी ना जा तू जग में आया जे नारू तीर अर्जन रचया सु हर मन ना बसाया गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखया पाया कह नानके श्री प्रवान हुआ जिन सतगुर सिउ जित लाया।

करता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद आस्था महला पहला वार श्लोका ना श्लोक महल पहले के लिखे टुंडे असराजे के दिन श्लोक महला पहला बल हरे गुरु अपने दिहाड़े सदवा।

पौड़ी अपने अवसर जो अपने रचिय माओ धर्त दशा जे कर असंड ठोचाओ दाता करता आप तुम किस देवे करे पसाओ।

सुनिए चारवाया मन अंधे जन्म वारिया। वड्डा हुआ धनीदार का संग्रह चलाया अग्गे करने के तो वाचे दल लेखा कर समझाया था उन्होंने पाउंडी हूं।

मुसलमान की पेड़े पे तुम यार हर पंडे इतना की जल्द करे पुकार जल्द रवे बुड़ी चट फेंगे यार नाम दिन करते कान किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सर।

0: ऑलरेडी टाइम हो दया कृपा करे तो स्वीकार करे सी सो सेवक सेवा करे जिसनों हुक्म मनाई सी हुक्म मनिया हुए परवान ता खसमे ता मेल पाए सी खस पाए सो करे मन चिंदिया सफल पाए सी ता दरगाह पैंदा जाए सी
1: ओ ये गावे रागी नदी देवी बहुभात।

पछानू। जय महा भयान तपत बहु कहाम, ते हर के नाम की तुम परछाम। जहा त्रिखा मन तुझ आकर खै, तह नानक हर हर अमृत बरख। भक्त जना की बर्तन नाम, संत जना के मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उधरे जन कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कमात। हर जन के हर नाम निधान, पाद ब्रह्म जन की नुदान। मन तन रंग रत्ते रंग एक, नानक जन के वृत विवेक। हर का नाम जन को मुकत जुगत, हर के नाम जन को त्रिभुत पुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परे न पांग। हर का नाम जन की वड्याई, हर के नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाही वियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा। हर हर जन के मालख दीना, हर तन जन को आप प्रभ दीना। हर हर जन के ओठ सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रसमाते। आठ पहर जन हर हर जपे, हर का भगत प्रगट नहीं छपे। हर की भगत मुगत।

नाम की महिमा संत रिद्वस है, संत प्रताप दुर्त सबनस है, संत का संग बड़ भागी पाई है, संत की सेवा नाम तिहाई है, नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन को ए सलोक। बहु शास्त्र बहु सिमृति देखे सर्व टंडोल, पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत वख्यान, जोग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग बन मध्य क्रिया, अनक प्रकार की बहु जतना, पुनदान हो मैं बहु रतना, शरीर कटाए हो मैं कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौखंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे, महा उदास तपी सरथी वे, अगन माए होमत प्राण, कनक असव है वर कुम दान, न्योली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संजम असाधन, निमग निमग कर श्री कटावे, तो कही हूँ मैं मेल न जावे, हर के नाम संसर कछ नाए, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे, मन कामना तीरथ दे छुटे, गर्भ गुमान ना मन ते हुटे, सोच करे दिनस अर रात, मन की मलना तन ते जात, इस देही को बहु साधना करे, मन ते कब हुना भिख्या टरे, जल तो वे बहु देह अनीत, सुध कहा होय काचे पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उधरे पत बहुमूच, बहुत स्याण अप जम का पहु व्यापे, अनक जतन कर तृष्णना त्रापे, एक अनेक अग्नि बुझे, कोट उपा उधर गय नहीं सीझे, छूटस नाही ऊह पयाल, मोहे व्यापे माया जाल, अवर कर तूत सगली जमडाने, गोविंद भजन बिनती नहीं माने, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज सुपाए, चार पदार्थ जे को मांगे, साधना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सदगावे, जे को अपनी शोभा लो रह, साध संग एहो मैं छोरे, जे को जन्म मरण ते डरे, साधना की सरनी परे, जे जन को प्रभदस प्यासा, नानकता के बल बल जासा, सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जा का मिटे अभिमान, आपस को जो जाने नीचा, सोऊ गनिये सबसे ऊंचा, जा का मन हो सगल की रीना, हर हर नाम तिन कट कट तीना, मन अपने ते बुरा मिटाना, पेख है सगल सिख साजना, सुख दुख जन समदृष्टि।

सगल सामग्री तुम रे सूत्रत हरी, तुम ते हो आज्ञाकारी, तुमरी गत में तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। सलोक दीन हार पर छोड़ के लग है अन सुवाए, नानक हु न सीझई बिन नावे पत जाए। अष्टपदी दस वस्तु ले पाछे पावे, एक बस्त कारण बिखोट गवावे, एक पीना दे दस्ती हिरले, तो मूड़ा कहो का करे। जिस ठाकुर सुना ही चारा, ताको की जय सद नमस्कारा, जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुखता हूँ मन उठा। जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। अगनत साहु अपनी देरास, खात पीत वरत अनंत उलास, अपनी अमान कछु बाहुर साहु ले, अज्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बहुर उसका विश्वास न होवे। जिसकी वस्तिस आगे रखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे, उसके चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। अनक पात माया के हेत, सर पर होवत जान अनेत, बिरखी छाया स्यों रंग लावे, ओह बिन से ओह मन पछतावे। जोधि से सो चालन हार, लपट रहे होते अंध अंधार, बटाऊ स्यों जो लावे नेह, ताकू हाथ न आवे के। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई। मिथ्या तन तन कुटुंब संभाया, मिथ्या हो मैं ममता माया, मिथ्या राज जोबन तन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती असो वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता, मिथ्या त्रोमो अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान। अस्थिर भगत सात की शरण, नानक जब जब जीवे हर के चरण। मिथ्या सर्वन पर निंदा सुने है, मिथ्या हस्त पर द्रव को हिरे, मिथ्या नेत्र पेखत प्रत्रिय रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद, मिथ्या चरण पर विकार को तावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे, मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत विकारा। बिन बूझे मिथ्या सब पहे, सफल दे नानक हर हर नाम लये। बिरथी साकत की आरजा, साच बिना कह होवत सूचा, बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवता के दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रहन बिरथा बिहाये, मेघ बिना ज्यों खेती जाए। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों के फन के निरारत दाम। तन तन तेजन जिह कट बस्यो, हर नाओ नानक ताके बल बल जाओ। रहत अवर खच अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंडलावत। जानन हार प्रभु प्रवीण, बाहर पे हित न काहो कीन। अवर उपदेश अपना करे, आवत जावत जन में मरे। जिसके अंतर बसे निरंकार, किसकी सीख तरह संसार। जो तुम पहने तिन प्रभ जाता, नानक उंजन चरण प्राता। करो बेंती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आप पहमाने। आप है आप करत निबेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा। उपाव से आनप सगल ते रहत, सब कछ जाने आत्म की रहत। जिस पावे तिसले लड़ लाए, थान थनंतर रह समाए। सो सेवक जिस कृपा करी, निम

गुरुदेव अष्टपदी जय प्रसाद छत्ति अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे। जय प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे। जय प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे तिहाय सदा मन अंदर। जय प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना। जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा तिहाइये तिहावन जोग। जय प्रसाद पाठ पटंबर अढ़ावे तिसे त्याग कथ अवर लुभावे। जय प्रसाद सुख तेज सोई जय मन आठ पहर ता का जस गावे जय। जय प्रसाद तुझ सब को माने मुक्ता को जस रसन बखाने। जय प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पावहं। प्रभु जी जपत दर गए मान पावे नानक पत से ती कर जावे। जय प्रसाद आरोग कंचन देही लिवलाओ तिस राम स्नेही। जय प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत। जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभुता के। जय प्रसाद तुझको ना पहुँचे मन सास सास सिमरो प्रभु ऊचे। जय प्रसाद पाए दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे। जय प्रसाद आप मुगन पहरी जय मन किस सिमरत को आलस की जय। जय प्रसाद असु हस्त असवारी मन किस प्रभु को कब हूँ ना बिसारी। जय प्रसाद बाग में लख तना राख प्रोय प्रभु अपने मना। जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसे तिहाई। तिसे तिहाई जो एक अलख है इहा उहा नानक तेरी रख है। जय प्रसाद करे पुन बहुदान मन आठ पहर कर किसका ध्यान। जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को साथ साथ चितारी। जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप। जय प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात। जय प्रसाद तेरी पत्र है गुरु प्रसाद नानक जस कह। जय प्रसाद सुने करण नाद जय प्रसाद देखे विस्माद। जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहजे बसना। जय प्रसाद हस्त कर चले जय प्रसाद संपूर्ण फले। जय प्रसाद परम गत पावे है जय प्रसाद सुख सहज समावे। ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागो गुरु प्रसाद नानक मन जागो। जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल न मनहु विसार। जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ता को जाप। जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे। जय प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता स्वराज। जय प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपे जप सोए। आप जपाए जपे सो नाओ आप गवाए सो हर गुन गाओ। प्रभु कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए। सर्व निधान प्रभु तेरी माया आपको कछु ना किन्हु लया। जित जित लावो तित लगे हरनाथ नानक इनके कछु न हाथ। सलोक अगम अगाध पार बन सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुनमीता नानक बिनवंता साध जिना की अचर्ज कथा अष्टपदी। साध के संग मुख उज्जल होत साध संग मन सगली खोत। साध के संग मिटे अभिमान साध के संग प्रगटे सो ज्ञान। साध के संग बुझे प्रभु नेरा साध संग सब होत निबेरा। साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा पर न कौन प्राणी नाम साध की शोभा प्रभु माहे समानी। साध के संग अगोचर मिले साध के संग सदा पर फुले। साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पहुंचा। साध संग होए सबकी रेन साध के संग मनोहर बैन। साध के संग न कतू सावे साध संग अस्थित मन पावे। साध के संग माया ते भिन्न साध संग नानक सब सुप्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत साधु के संग महापुण्य।

साध के संग सजै सब आप, आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बन आई। साध के संग न कबू तावे, साध के संग सदा सुख पावे। साध संग बस अगोचर लह, साधु के संग अजर सह। साध के संग बस थान ऊंचे, साधु के संग महल पहुँचे। साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म। साध के संग पाए नाम निधान, नानक साधु के कुर्बान। साध के संग सब कुल उधारे, साध संग साजन मीत कुटम निस्तारे। साधु के संग सो तन पावे, जिस संते सब को वरसावे। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा। साधु के संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध के संग सर्व थान गम, नानक साध के संग सफल जन्म। साध के संग नहीं कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल। साध के संग कलुख हथहरै, साध के संग नरक प्रहरै। साध के संग इहां उहां सोहेला, साध संग बिचरत हर मेला। जो इच्छे सोई फल पावे, साध के संग ना बिरथा जावे। पार ब्रह्म साध हृद बसै, नानक उधरे साध सुन रसै। साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साध के संग ना मनते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साध के संग लगे प्रभु मीठा, साधु के संग घट घट डीठा। साध संग पहि आज्ञाकारी, साध संगत पहि हमारी। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा वेद न जान है, जेता सुने तेता बखियान है। साध की उपमा तेह गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा व्यंत। साध की शोभा उससे ऊंची, साध की शोभा मुझ से ऊंची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। चलो मन साचा मुख साचा सोए, अवर न देख एक बिन कोए। नानक ए लक्षण ब्रह्मज्ञानी होए अश्वरी। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व को शोक। ब्रह्मज्ञानी के दृष्ट समान, जैसे राज रंग को लागे कुल पवान। ब्रह्मज्ञानी के तीरज एक, जो वस्धा को खोदे को चंदन लेप। ब्रह्मज्ञानी

जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्मज्ञानी के मित्र शत्रु समान, ब्रह्मज्ञानी के नाही अभिमान। ब्रह्मज्ञानी ऊंचते ऊंचा, मन अपने है सबसे नीचा। ब्रह्मज्ञानी से जन पहे, नानक जिन प्रभु आप करे। ब्रह्मज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्मज्ञानी चीना। ब्रह्मज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्मज्ञानी ते खुशबू राना पया। ब्रह्मज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्मज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्मज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्मज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्मज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्मज्ञानी के गरीबी समाहा, ब्रह्मज्ञानी प्रभु उपकार उमाहा। ब्रह्मज्ञानी के नाही तंदा, ब्रह्मज्ञानी ले तावत बंधा। ब्रह्मज्ञानी के होए सुफला, ब्रह्मज्ञानी सुफल फला। ब्रह्मज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्मज्ञानी जपे सगल संसार। ब्रह्मज्ञानी के एक रंग, ब्रह्मज्ञानी के बसे प्रसंग। ब्रह्मज्ञानी के नाम धार, ब्रह्मज्ञानी के नाम परवार। ब्रह्मज्ञानी सदा सत जागत, ब्रह्मज्ञानी अहंभूत त्यागत। ब्रह्मज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्मज्ञानी के कह सदा आनंद। ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्मज्ञानी एक संहिता। ब्रह्मज्ञानी के होए अचिंत, ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्मज्ञानी जिस करे प्रभु आप, ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्मज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइये। ब्रह्मज्ञानी को खोज महेश्वर, नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्मज्ञानी के सगल मनमा है। ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्मज्ञानी का कथया न जाए अदाखर, ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्मज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने।

ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी सलोक, उरत हरे जो अंतरनाम, सर्व में देखे भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानक ओ अपर सगल निस्तार, अष्टपदी मिथ्या ना ही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श, प्रक्रिया रूप न देखे नेत्र, साध के टहल संतंग हेत, करना सुने काहु की निंदा, सब ते जान आपस को मंदा, गुरु प्रसाद विख्या पर हरे, मन की वासना मन से करे, इंद्री जित पंच दोख ते रह, नानक कोट मधे को ऐसा अपरस, वैष्णव सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, विसन की माया ते होए पहन, कर्म करत होवे नहि कर्म, इस वैष्णव का निर्मल धर्म, काउ फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संग्राचे, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरे नाम जपावे, नानक हो वैष्णव परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिन से सगला पारम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मन खोवे, तिस भगवती कीमत उत्तम होवे, भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तन

अंतर उतारै, पस प्रेत मुग्ध पात्र को तारै, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहो जुगत किते न पाइये धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर करम, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, जिसका नाम सत रामदास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास संतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह परवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सोझी परे, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभु की आज्ञा तम हितावे, जीवन मुकुत सो कहावे, तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा अनंत है ना ही वियोग, तैसा सुवरण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वर्ताय साई जुगत, नानक ओह पुरख कहिए जीवन मुकत, पार ब्रह्म कह सगले ठाओ, जित जित कर राख है तैसा तिन नाओ, आपे करण करावन जोग, प्रभ पावे सोई फुन होग, पसरे आप होए अनत तरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पहे निहाल, सलोक पुस्तक कर है अनेक जन, अंत न पारावार, नानक रचना प्रवृत्ति, बहुविध अनेक प्रकार, अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पहे तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमे उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपी सर होते, कई कोट आत्म ध्यान तार है, कई कोट कब काब विचार है, कई कोट नवतन नाम त्याव है, नानक करते का अंत न पाव है, कई कोट पहे अभिमानी, कई कोट अंत अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अपग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्प को ही रहे, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट प्रदेश प्रमाहे, जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पाथर बिरख निप जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सत्यर सूर नक्षत्र, कई कोट देवदानव इंद्र सिर छत्र, सगल सामग्री अपने सूत तार है, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है, कई कोट राजस्तामस तातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अर्थास्त, कई कोट किए रतन समुद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिरजीव, कई कोट गिरी मेर सुवरंथी वह, कई कोट जग किनर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच, सबते नेरे सब होते दूर, नानक आप अलिप्त रह भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुरग निवासी, कई कोट जन्मै जीव मरह, कई कोट बहुजो निफिरह, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काले थक पाहे, कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया में चिंत, जय जय पहना तह तह राखे, नानक सब किज प्रभु के हाथे, कई कोट पहे वैरागी, राम नाम संग तिन लिवलागी, कई कोट प्रभु को खोजनते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभु प्यास, तिन को मिलियो प्रभु अविनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप तो प्रसन्न, नानक ते जन सदा तन तन, कई कोट खानी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई कोट होए अवतार, कई जुगत किनो विस्तार, कई बार पसरियो पासार, सदा सदा इक एकंकार, कई कोट की ने वह भांत, प्रभ ते होए प्रभु माहि समात, ताका अंत न जाने कोए, आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगास, कई कोट तत के बेटे, सदा निहार एको नेत्रे, कई कोट नाम रस पीव है, अमर कहे सद सद ही जीव है, कई कोट नाम गुण गाव है, आत्म रस सुख सहज समाव है, अपने जन को साथ साथ समारे, नानक ओए परमेश्वर के प्यारे, सलोक करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोए, नानक किस बलहारण है, जल थल महियल सोए, अष्टपदी करण करावन करने जोग, जो तिस पावे सोई होग, खिन में थाप उठापन हारा, अंत नहीं किस पारा वारा, हुक्मे तार अदर रहावे, हुक्मे उपजे हुक्म समावे, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वड्याई, नानक सब में रह समाई, प्रभु पावे मानुकत पावे, प्रभु पावे ता पाथर तरावे, प्रभु पावे बिन सांस तिराखे, प्रभु पावे ता हर गुण पाखे, प्रभु पावे ता पतत उधारे, आप करे आपन विचारे, दुहा सिर्या का आप स्वामी, खेले विकसे अंतर जामी, जो पावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवर न आवे, कहु मानुकते क्या हो आवे, ज्योतिष पावे सोई करावे, इसके हाथ हुए ता सब किछ ले, ज्योतिष पावे सोई करे।

दृष्ट कछु न आवै ति सत्काल दह दिस प्रगटावै जा को अपनी करै बख्शीस ता का लेखा न गने जगदीश ज्यो पिंड सब तिसकी रास घट घट पूरन ब्रह्म प्रगास अपनी बनत आप बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई इसका बल नाही इस हाथ करण क्राम सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो ज्योतिष पावे सोई फुंतियो कबहू ऊंच नीच में बसे कबहू सोग हरख रंग हसे कबहू निंद चिंद व्यवहार कबहू ऊब आकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार कबहू नित करे बहु पांत कबहू सोय रहे दिन रात कबहू महाक्रोध विकराल कबहू सर्व की होत रवाल कबहू होय बह बड़ राजा कबहू पे खारी नीत का साजा कबहू अब कीरत में आवे कबहू पला पला कहावे ज्यो प्रभु राखे तिव ही रहे गुर प्रसाद नानक सच कहे कबहू होए पंडित करे बख्यान कबहू मोन तारी लावे ध्यान कबहू तट तीरथ स्नान कबहू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया अनक जोन परमे भरमिया नाना रूप ज्यो स्वागी दिखावे ज्यो प्रभु पावे तिवे नचावे।

नानक गर्भ गले अश्वरी जिसके अंतरराज अभिमान सोन रख पाती होवत स्वान जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत बिष्टा का जंत आपस को कर्मवंत कहावे जन्म मरे बहु जोन परमावे तन पुम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक इहा मुक्त

लाए, ज्यो जल बिहुन मछली तड़फड़ाए। संत का दोखी पोखन हिराजे, ज्यो पावक ईधन नहीं तापे। संत का दोखी छुटे केला, ज्यो बुआर तिल खेत माहे दुहेला। संत का दोखी तरम ते रहत, संत का दोखी सदमितया कहत। कीर्तन दखा तुरी पया, नानक ज्योतिष पावे सोई थिया। संत का दोखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दोखी को दरगह मिले सजाए। संत का दोखी सदा सहकाइये, संत का दोखी मरे ना जीवाइये। संत के दोखी की पूजे न आसा, संत का दोखी उठ चले निराशा। संत के दोख न तृष्टै कोए, जैसा पावे तैसा कोई होए। पया कीर्तन मेटै कोए, नानक जाने सच्चा सोए। सब कट तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभु की उत्सव करो दिन रात, तिसे त्याओ सास गिरास। सब कुछ वर्ते तिसका किया, जैसा करे तैसो को थिया। अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कह विचार। जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे, बड़ भागी नानक जन से। सलोक तजो सियान अपसुरजन हो, सिमरो हर हर राए। एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम को जाए। अष्टपदी मानुखी टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान। जिसके दिए रहे अघाए, बहु न तिसना लागे आए। मारे राखे एक आप, मानुख है किसना ही हाथ। तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रखकंठ परोए। सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए, नानक विघन न लागे कोए। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लह जियो। नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग। चरण चलो मार्ग गोविंद, मिठ है पाप जपिए हर बिंद। कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा। बड़ भागी के जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे। राम नाम जो करे विचार, से तनवंत गनी संसार। मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी। एक को एक एक पछाने, इत उत्की ओसो जी जाने। नाम संग जिसका मन माने, नानक तिन्ह निरंजन जाने। गुरु प्रसाद आपन आप सुझे, इसकी जानो तृष्णा बुझे। साल संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते ओ हरजन रहत। अनदिन कीर्तन केवल बखियान, गृहस्थ में सोई निर्वाण। एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटिए जम की फासा। पावन की जिस मन भूख, नानक तिसे न लागे दुख। जिसको हर प्रभु मंचित आवे, सो संत सुहेला नहीं डुलावे। जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक कहु किस से डरे। जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया। सोधत सोधत सोधत तिझिया, गुर प्रसाद तत् सब बुझिया। जब देखो तब सब किस मूल, नानक सो सुखम सो ये स्थूल। न किस जन्म में न किस मरे, आपन चलित आप ही करे। आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ। आपे आप सगल में आप, अनक जुगत रस्थाप उथाप। अविनाशी नाही किस खंड, तारण तार रहो ब्रह्मंड। अलख उपेव उपुरक प्रताप, आप जपाए ता नानक जाप। जिन प्रभ जाता सो स्वभावंत, सगल संसार उधर किन्मंत। प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख विसारण। आपे में लय कृपाल, गुरु का शब्द जप है निहाल। उनकी सेवा सोए लागे, जिसनों कृपा करे बड़ पागे। नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन प्रभ को उत्तम करमान। जो किच करे सो प्रभ के रंग, सदा सदा वसै हर संग। सहज सुभाए होवे सो होए, करने हार पछाणे सोए। प्रभु का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिसते उपजे तिस माए समाए, ओए सुख निधान उन्हों बनाए।

नानक तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गा ननहार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल सर्व की चिंता जिस मन माहे तिसते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कछु ना होए जे सो प्राणी लोचे कोई किस बिन नाही तेरे किस काम गत नानक जप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोहे प्रभ की जोत सगल कटसो है धनवंता होए क्या को गर्व है जहाँ सब किस किसका दी आदर वह।

नानक सो जनसदा अरोग जो मंदर को थामे थमन त्यों गुर का शोध मन है अस्थमन जो पाखान नाव चढ़तर है प्राणी गुर चरण लगत निस्तर है जीव अंधकार जी पर प्रगास गुरदर्शन देख मन हो विगास जो महा उद्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे तिन संतन की बात छो धूर नानक की हरलो चापूर मन मूर्ख कहे बिल लाइये पूर्व लिखे का लिखिया पाइये दुख सुख प्रभ देवनहार और त्याग तो तिसे चितार जो कुछ करे सोई सुखमान भूला काय फिरे अजान कौन बस आए तेरे संग लपट रहे हो रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पद से कर जाहे जिस वखर को लैन कुआया राम नाम संतन कर पाया तज अभिमान ले हो मन मोल राम नाम हृदय में तोल लाद खेव संत है संचाल और त्याग बिखिया जंजाल तन तन कह सब कोए मुख उज्जल हर दरगह सोए एह वापार बिरला वापार है नानक ताके सद बलिहार है चरण साध के तोहे तोहे पियो अर्प साध को अपना जियो साध की तुहर करो स्नान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा वट पहगी पाइये साध संग हर कीर्तन गाइये अनक विघन थे साधु राखे हर गुण गाय अमर दृष्टाख है ओट गही संत दर आया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को जीवा लनहार पोखे को देवत आधार सर्व निधान जा की दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लहना पाए सब किस किस का ओ करने जोर किस बिंदु सर हो आना होग जप जन सदा सदा दिन रहनी सबसे ऊंच निर्मल ए करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सोजन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रतीत तिह जन आवे हर प्रवचित भगत भगत सुनिए तेह लोए जाके हृदय एक होए सच करनी सचता की रहत सच हृदय सत मुख कहत साची दृष्ट साचा आकार सच वर्त साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सोजन सच समाता सलोक रूप न रेख न रंग किछ त्रेह गुण ते प्रभ पिन तिसे बुझाए नानका जिस हो वै सो प्रसन्न अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन में राख मानुख की तू प्रीत त्याग तिसके प्रे नाही किछ कोय सर्व निरंतर एक को सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद सार तेरे की चरनी पाओ नानक के मन एहो अनुराओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरण परम जाका नेत्र खोर इसका मंत्र न जाने होर आनंद रूप मंगल सद जाके सर्व थोक सुनिए करता के राज में राज योग में जोगी तप में तपी सरगृह सत में भोगी क्या त्याय भगते सुख पाया नानक किस पुरख का किने अंत न पाया जा की लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन

बार बार तव जपी है पी अमृत एहो मंथन त्रपी है नाम रतन जिन गुरु मुख पाया किस किस अवर ना ही दृष्टाया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन तृप्ताने मन तन नाम मह नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कहु नानक जन कैसद काम बोलो जस जेवा दिन रात प्रभ अपने जन की नीदात रह भगत आत्म कह चाय प्रभ अपने चो रह है समाये जो हो आहो सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने जिसकी महिमा कौन बखानो जिसका गुण कह एक न जानो आठ पहर प्रभ बसे हजूरे कहो नानक से जन पूरे मन मेरे तिन की ओट लहे मन तन अपना तिन जन दे जिन जिन अपना प्रभु पछाता सो जन सब थोका दाता जिसकी शरण सब सुख पावे जिसके दर सब पाप मिटावे अवर स्यानत सगले छाड़ तिजन की तू सेवा लाग आवन जान न होवे तेरा नानक तिजन के पूजो सद पैरा सलोक सतपुरुष जिन जाने सतगुर तिसका नाओ तिसके संग सिख उधरे नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिख की करे प्रतिपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिक्की गुर दुर्मत मल हिरे गुरबचनी हर नाम उचरे सतगुर सिख के बंधन काटे गुर का सिख विकार से हटे सतगुर सिख को नाम तन दे गुर का सिख वड पागी हे सतगुर सिख का हलत पलत सवारे नानक सतगुर सिख को जी नाल समारे गुर के गृह सेवक जो रहे गुर की आज्ञा मन में सह आपस तो कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सद त्यावे मन बेचे सतगुरु के पास तिस सेवक के कार्य रास सेवा करत हुए नेकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मतले बीस बिस्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुरु जिस हृदय हरनाओ अनक बार गुर को बल जाओ सर्व निधान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म में जन जन में है पार ब्रह्म एक है आप नहीं कस परम सह स्यान पलया न जाइये नानक ऐसा गुरुवर भागी पाइये सबल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल दीत पेखत संग्राम गुण रवे पार्वण की दर गवे सुनकर बचन करण आघाने मन संतोष आत्मपतिया ने पूरा गुरु अख्यो जा का मंत्र अमृत दृष्ट पेख हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिसलय मिलाए देवा एक उस्तत अनेक सतपुरुष पूर्ण विवेक काहू बोलना पहुँचत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वय सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनक भगत बंधन नित करह चरण कमल हृदय सिमरह सदवलहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने यो हर रस पावे जन कोए अमृत पीवे अमृत होए उस पुरुष का ना ही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुणतास आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश से वो को दे मोह माया के संग ना ले मन में रखे हर हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक परम मोह दुख तहनासे तप्त माए ठान वर्ताई आनंद पया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेशे पहु चुका निर्प हो बसे सगल व्याध मन से खेन से जिसका साथ इन कृपा तारी साध संग जप नाम मुरारी चित पाई चुके परम गवन सुन नानक हर हर जस्त्रवन निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला तहर जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जाना ही कोए सर्व निरंतर एको सोए ओत पोत रवया रूप रंग पहे प्रगास साध के संग रच रचना अपनी कल तहारी अनक बार नानक बलहारी सलोक साथ न चाले बिन भजन बिख्या सगली चार हर हर नाम कमावना नानक एहो तनसार अष्टपदी संतजना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव सब मीत विसारो चरण कमल विद में उतारो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो हो नाम हरवथ एहो तन संचो हो भगवंत संतजना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंठ उठतावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख को नित बाचे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करे पली करनी सा शोभा पजहर की चरणी अनक उपावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवखदलाए सर्व निधान में हर नाम निधान जप नानक दरगह प्रमाण
मन पर्व दोहर के नाए दय दिस्तावत आवैठाए आपको बिजन न लागे कोए जाके हृदय बसे हर सोए कल ताती ठांदा हरनाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ ओबिन से पूर्ण हुए आस भगत पाए आत्म प्रगास कित कर जाए बसे अविनाशी कहो नानक काटी जम फांसी सत विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा आवागमन मिटे प्रसेव आप त्याग शरण गुरुदेव केवर तन जन्म का होय उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनक उपाव न छूटन हारे सिमरत सा सत बेत विचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंछत नानक फल पाए संगना चालस तेरे तना तो क्या लपटावे मूर्ख मना सुख मीत कुटुंब अर्बनता इनते कहो हो तुम कौन सना था राज रंग माया विस्तार इनते कहो हो कौन छुटकार अस हस्ती रथ असवारी झूठा डंप झूठ बासारी जिंदिए तिस बुझे न बिगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मत तूले इयाने भगत बिना भोडो बेस्याने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के तिल बिक जाहे आप जपहो औरा नाम जपावहो सुनत कहत रहत गत पावहो सार पूत सत हर को नाओ सहज सुपाय नान गुन गाओ गुन गावत तेरी उतरस मैल बिनस जाए हो मैं विष फैल होहे अचिंत बसै सुख नाल सास ग्रास हर नाम समाल छाड़ स्यानप सगली मना साध संग पावे सच तना हर पुंजी संच करो व्यवहार यहाँ सुख दरगह जयकार सर्व निरंतर एको देख कहु नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको साला है एक सिमर एको मन आहे एकस्के गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूरन पूर हो प्रव्याप अनक विस्तार एक से भय एक अराध परा छट गए मन तन अंतर एक प्रवराता गुर प्रसाद नानक इक जाता सलोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रवदान कर कृपा देवो हर नाम साधना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी सरधापुर सदा सदा प्रभ के गुण गाओ सास सास प्रभ में तिहावो चरण कमल सो लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एक आधार नानक मांगे नाम प्रवसार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोय जिन चाख्या से जन तृप्ताने पूरन पुरख नहीं डोलाने सुपर परे प्रेम रस रंग उपजे चाव साथ के संग परे शरण आन सब त्याग अंतर प्रगास अनदिन लिवलाग बड़भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पही सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुकत जन पहया जन्म मरण दुख परम गया इच पुन्नी सरदा सपूरी रव रहा सब संग हजूरी जिसका साथी लिया मिलाए नानक भगति नाम समाए सो क्यों बिसरे जे काल न पहने सो क्यों बिसरे जे किया जाने सो क्यों बिसरे जिन सब किस दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे अगन में राखे गुरु प्रसाद को बिरला लाखे सो क्यों बिसरे जे बिस्ते काढ़े जन्म जन्म का टूटा गाढ़े गुरपुरे तत ए बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो एह काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवर है नाम जपावो भगत पाए त्रिये संसार बिन भगति तन हो सिछार सर्व कल्याण सुख निध नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख का होत नास नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मंतन अंतर एह सुआओ नेत्र उपेख दृत सुख होए मन बिरसे साध चरण तोये भगत जना के मंथन रंग बिरला को उपावे संग एक बस दिजय करमाया गुरु प्रसाद नाम जपलाया ताकि उपमा कहीं न जाए नानक रहया सर्व समाए प्रब बख्शन दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा कर्त कृतपाल आद पुरुष कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जो पैसो होए पुनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरुष भगवान सर्व वैकुंठ मुकुत मोख पाए एक निमक हर के गुण गाए अनक राज भोग बढ़े आई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का पर संगीत रसना जपति हर हर नीत फली सुकरणी शोभा धनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरुमंत साध संग प्रभ
ਸਭ ਦੇਹੋ ਨਿਵਾਸ ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਲੋਕ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਣ ਸਮਾਧੀ ਆਪ ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਬ ਆਕਾਰ ਇਹ ਕਛੁ ਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤਬ ਕਹਿਤੇ ਹੋਤਾ ਜਬ ਧਾਰੀ ਆਪਨ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਤਬ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀ ਸੰਕਮਾਤ ਜਬ ਇਸਕਾ ਵਰਨ ਚਹ ਨ ਜਾਪਤ ਤਬ ਹਰ ਸੋਗ ਕਹੋ ਕਿਸੈ ਵਿਆਪਤ ਜਬ ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਬ ਮੋਹ ਕਹਾਂ ਕਿਸ ਹੋਵਤ ਪਰਮ ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਪਰ ਤੀਜਾ ਨਾਨਕ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਨ ਦੂਜਾ ਜਬ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਧਨੀ ਤਬ ਬੰਦ ਮੁਕਤ ਕਹੋ ਕਿਸ ਸੋਗਨੀ ਜਬ ਏਕ ਕਹਿ ਹਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਤਬ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਹੋ ਕੌਣ ਅਵਤਾਰ ਜਬ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਤਬ ਸਿਰ ਸਕਤ ਕਹੋ ਕਿਤ ਠਾਏ ਜਬ ਆਪ ਹੈ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਧਰੈ ਤਬ ਕਵਨ ਨਿਡਰ ਕਵਨ ਕਤ ਡਰੈ ਆਪਨ ਚਲਿਤ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸੁਖ ਆਪਨ ਆਸਨ ਤਹਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਹੋ ਕਹਾ ਬਿਨਾਸਨ ਜਬ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਤਬ ਜਮ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਕਹੋ ਕਿਸ ਹੋਏ ਜਬ ਅਵਿਗਤ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕਾ ਤਬ ਚਿਤ੍ਰਗੁਪਤ ਕਿਸ ਪੂਛਤ ਲੇਖਾ ਜਬ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਅਗੋਚਰ ਅਗਾਧੇ ਤਬ ਕੌਣ ਛੁਟੇ ਕੌਣ ਬੰਧਨ ਬਾਧੇ ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਹੀ ਅਚਰ ਜਾ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਉਪਰ ਜਾ ਜੈ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖ ਪਥ ਹੋਤਾ ਤਹਿ ਬਿਨ ਮੈਲ ਕਹੋ ਕਿਆ ਧੋਤਾ ਜੈ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਾਨ ਤੈ ਕੌਣ ਕੋਮਾਨ ਕੌਣ ਅਭਿਮਾਨ ਜੈ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ ਤੈ ਛਲ ਛਿਟਰ ਲਗਤ ਕਹੋ ਕੀਸ ਜੈ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਜੋਤ ਸੰਗ ਸਮਾਵੈ ਤੈ ਕਿਸੇ ਭੂਖ ਕਵਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ ਜਬ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਆਪਨ ਸੰਗ ਬਨਾਈ ਤਬ ਕਵਨ ਮਾਏ ਬਾਪ ਮਿੱਤਰ ਸੁਪਾਈ ਜੈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਆਪੇ ਪ੍ਰਬੀਨ ਹੈ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹਾ ਕੂਚੀਨ ਜੈ ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਉਰਤਾਰੈ ਤਉ ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰੈ ਜੈ ਆਪਨ ਊਚ ਆਪਨ ਆਪ ਨੇਰਾ ਤੈ ਕੌਣ ਠਾਕੁਰ ਕਹੁਨ ਕਹੀਏ ਚੇਰਾ ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਗਤ ਜਾਨੂ ਆਪ ਜੈ ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਭੇਦ ਸਮਾਇਆ ਊਹਾਂ ਕਿਸੈ ਵਿਆਪਤ ਮਾਇਆ ਆਪਸ ਕੋ ਆਪੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੈ ਗੁਣ ਕਾ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜੈ ਇੱਕ ਹੈ ਏਕ ਏਕ ਭਗਵੰਤਾ ਤੈ ਕੌਣ ਅਚਿੰਤ ਕਿਸ ਲਾਗੈ ਚਿੰਤਾ ਜੈ ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਪਤਿਆਰਾ ਤੈ ਕੌਣ ਕਥੈ ਕੌਣ ਸੁਣਨੇ ਹਾਰਾ ਬਹੁ ਬੇਅੰਤ ਪੂਛਤੇ ਊਚਾ ਨਾਨਕ ਆਪਸ ਕੋ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚਾ ਜੈ ਆਪ ਰਚਿਓ ਪ੍ਰਪੰਚ ਆਕਾਰ ਤੈ ਗੁਣ ਮੈਂ ਕੀਨੂ ਵਿਸਥਾਰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੈ ਭਈ ਕਹਾਵਤ ਕੋ ਨਰਕ ਕੋ ਸੁਰਗ ਬੰਛਾਵਤ ਆਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ ਹੋਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਪਹਾਰ ਦੂਖ ਸੁਪਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਓ ਬਖਿਆਨ ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰ ਦੇਖੈ ਖੇਲ ਸੰਕੋਚੈ ਤੋ ਨਾਨਕ ਏਕੈ ਜੈ ਅਭਿਗਤ ਭਗਤ ਹੈ ਆਪ ਜੈ ਪਸਰੈ ਪਾਸਾਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਹੁਖ ਪਾਸ ਕਾ ਆਪੈ ਧਨੀ ਉਨਕੀ ਸੋਭਾ ਉਨਹੂ ਬਨੀ ਆਪੇ ਕੌਤਕ ਕਰੈ ਅਨੰਦ ਚੋਜ ਆਪੇ ਰਸ ਭੋਗਨ ਨਿਰਜੋਗ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਆਪਨ ਨਾਇ ਲਾਵੈ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਖੇਲ ਫਲਾਵੈ ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗਨਤ ਅਤੋਲੈ

0: अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित्यागो तरंग संतना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगन सागर तरो हर तन के फल ले भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का एह आधार उत्तम श्लोक साध के वचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोक कह निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन अनंत करे प्रभु गाजय प्रगटे गोपाल महंत के माथे नानक उधरे तिन के साथे शरण जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए वैर पहे सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पहे गुरुदेव पूरन होए सेव की सेव आल जंजाल विकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभु तारी नानक निभ ही खेप हमारी प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सो होत निधान सर्व इच्छाता की पूरन होए प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए सबते ऊंच पाए स्थान बहुर न होवे आमन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिदना निध बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध विद्या तप जोग प्रव ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सबके मद सगलते उदास सुंदर चतर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टिता एह फल तिजन कैम पने गुरु नानक नाम वचन मन सुने एह फल तिजन कै मुख पने गुरु नानक नाम वचन मन सुने एहो निधान जपे मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखानी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटे संत कृपा ते जम ते छुटे जाके मस्तक क्रम प्रभु पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसे सुने लाए प्रीत ते जन आवे हर प्रवचीत जन्म मरण ता का दुख निवारे दुर्लभ देह तत्काल उधारे निर्मल शोभा अमृतता की वाणी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन सह पह परम साध नाम निर्मलता के करम सबते उच्चता की शोभा बनी नानक ए गुण नाम सुखमनी सबते उच्चता की शोभा बनी नानक ए गुण नाम सुखमनी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God.
2: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 250-392-3874। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 250-392-3874। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ singhsabha2@gmail.com singhsabha2@gmail.com। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

अखे ज्यों ज्यों चल हैं चुभ है दुख पाव हैं जमकाल सहें सिर डंडा के।

एक है हर नामे की सुख मंडाखे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब कृपालू जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु सवारे सतसंगी जनों, सोहिला साहिब जी दी अमृत बाणी दी विचार अधीन आप जी ने चौथा शब्द श्रवण कीता है और इस अमृत बचन दे उच्चारण करता धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने। गुरु रामदास कृपालु सतगुरु जी ने इस अमृत बचन दे अंदर एक तां प्रभु दे चरणा विच अपेद होए हर जन उस दे अंदर दा रस, उस दी शोभा जो खंडा ब्रह्मंडा विच हुंदी है उस नूं निरूपण कीता है। और दूसरा इस शब्द दे अंदर ओ मनुख जो साकत बिरती वाले ने सारी जिंदगी खौमे विच जींदे ने ते जदों मौत आउणी है जिउंदे खौमे ते कंडे थले ने ते मरदे जम दे डंडे थले। गुरु साहिब ने ओहदा वी जिक्र कीता पर नाल एक होर किरपा कीती उहने सानू इस शब्द अंदर दे वकारां नूं खंडन करन दी जुगती परमेश्वर सतगुरु दे संगत दे चरणां विच झुकण दी बेनती करन दी जुगती ते अखीर विच वड्डे परमात्मा दे चरणां विच अरदास कीती सानू गरीबां नूं किरपा करके तू रख लै। इस शब्द दी विचार दा अज विषा है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी दे विच जिथे हजूर ने सनमुख दी गल कीती है उस दे विपरीत मनमुख दी जिंदगी दे बारे भी हजूर ने दस्या। कृपालू सतगुरु ने जिथे संत उपमा कीती उथे हजूर ने साकत दी बिरती तो भी सानू जाणू कराया। जिथे हजूर जी ने अमृत बाणी दे अंदर समर्पित होए जीवन जीण वाले गुरसिखां दी गल कीती उथे अमृत बाणी विच उहनां लोकां तो सुचेत रहण लई कहा कि जिहड़े जिंदगी विच कमाण लई तुरन लई तैयार नहीं केवल जबान दे नाल इस नूं कैंची बना के लोकां दे अंदर ही कटन ते तुरे। दोनों पक्ष अज दे शब्द विच भी रखे। पहली बेनती अर्ज मैं करनी चाहना हूं एक साकत दी गल है ते दूसरी अमृत बचन विच खर जन दी गल है। गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत बाणी विच बेअंत प्रमाण ऐसे ने जिदे विच कृपालू दाता जी ने साकत बंदे दी संगत तो अपने आप नूं सुचेत करके बचन दी सानू ताकीद कीती है। आप अमृत बचन पढ़दे हो ते कबीर साहिब जी ने ता अपनी रचना विच
ਸਾਖਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ, ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਦੂਰੈ ਜਾਈਐ ਭਾਗ, ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ, ਤਉ ਕਛ ਲਾਗੈ ਦਾਸ। ਕਿ ਸਾਖਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ, ਕਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਮੈਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਬਸਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਦਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸਾਖਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਖਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ

खसम संभाले जिनका उपदेश ज्ञानंजन दिया नेत्री जगत निहाले कसम छोड़ दू जय लगे डूबे से बन जा रहा।

थोड़ी कितने अंदर से उनको एक नगरी हेठ चिल्लाएंगा, आपे देवड़े आई आपे कर्म कराएंगा, वड़हो वड़ा उड़ में इतनी सिरे से कंधे लाएंगा, नगर पट्टी जय करे सुल्ताना काहू कराएंगा।

दूध कर्म पुन सुरत समायण होए निराश जमाव। भांडा धोए बैस धूप देव तौ दूध कौ जाव। दूध कर्म पुन

0: बड़े ही आनंदमयी माहौल विच आप जी ने यह पावन शब्द श्रवण किया है। जाय मिला तिना सजना कुतो ना ही नेहो, और नाल नाल सतगुरां दे इतिहास विचों वचन भी आपनिया ने श्रवण किए हैं। बहुत ही रसीले रंगीले आनंदमयी माहौल विच आप जी ने गुरु का आनंद माणिया है। भाई स्वरण सिंह जी मिठा टिवाणा जो इसे दर घर तो वरसाए हुए कीर्तनीय हैं, इस दर घर विच बड़ी बख्श है, रहमत है। निके निके बच्चे भी एहो जा कीर्तन कर जाते हैं कि संसार विच लोकी दुनिया विच लोकी पुछते ने मिठे टिवाणे विच वो किहड़ी बख्शिश है जिहड़ी कीर्तन राही इन्हां बच्चियां विचों नज़र आउंदी है। कई तो प्यारे ये भी गल करते ने कि मिठे टिवाणे विच मिठे टिवाणे दे आटे विच वो मिठास है कि जिहड़ा सेवा करके प्रशादा छकदा है। विद्यार्थी बच्चा ते महंत बाबा जवाहर सिंह जी, संत भगत सिंह जी, लंगर दे धनी बाबा जमीत सिंह जी, बाबा हरी सिंह जी, बाबा तारा सिंह जी, इन्हां महापुरखां दीआं कमाईआं दा ओह पात्र बन जांदा है। सो भाई इह घर बड़ा महान है, और इस वेले महंत प्रतपाल सिंह जी, संत अजीत सिंह जी, संत सतनाम सिंह जी, संत बहादुर सिंह जी बड़े ही गरीबी गदा दे मालक, उही रूप बाबा तारा सिंह जी वाला, उही मुस्कुराहट चेहरे दी महंत प्रतपाल सिंह जी विचों नज़र आउंदी है। भाई प्यारा सिंह जी आप जी नूं कीर्तन द्वारा निहाल करनगे, बड़े प्यार नाल सरवण करोगे।
1: सो गुरु पहें अरदास कर।

मन तन अर्थ तन। पूजो पूजो गुरु के पैर दुर्मत जाए जाए, साध जना के संग पवजल दिखाए।

0: तू मेरे जीव प्राण सुखदाता, कर कृपा करो प्रभु दात, तुमरी उस्तत करो निरात। सारिया ने मिलकर पढ़िया अरदास की गरीब नवाज, ये कृपा कर दियो तुमरी उस्तत करो निरात। तेरी उस्तत वडियाई विच ही ये मन हर वेले जुड़िया रहे, तेरी सिफ सलाह विच ही ये रसना हर वेले लगी रहे। बस इहो ही दात बख्शिश कर दियो, विसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक चाओ। इहो गुरु नानक दे घर तों इहो ही आपां दातां लैके जानिया ने, मंग के जानिया ने, बाकी तां सानू सारा कुछ आपे मिल जाना। सतगुरु जी का फरमान है, तू मेरो प्यारो तां कैसी भूखा, तू मन वसिया लगे ना दुखा। वो आ जाए सारा कुछ ही आ जाएगा, भुलां चुकां दी खिमा। कल दे दीवाना दे विच आपां ने वध चढ़ के अमृत वेले तो लैके दीवाना विच फिर नगर कीर्तन दी हाजरियां विच आपां ने हाजिर होना है। बख्शो असीसां बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: आओ गुरु की सास लिख पांच साल वालों को तुम्हारा सब सुनाओ, जो हमारी विध होती मेरे सतगुरा सा विध तुम हर जानो आपे, हमरे ते फिरते कोई बात ना पूछता। गुरु सतगुरु संग किरे हम थाते, आओ यतन करिए गुरु रामदास पातशाह जी दे बड़ा प्यारा शब्द। सतगुरु कृपा करके रहमत करके मन करके हाजरियां लवाइए, सारे चढ़दी कला नाल गाओ। लो गुरु जी।

सेवक जन माने प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे गुरु बाणी कहे सेवक जन माने प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे। कलयुगी जीवां दा निस्तारा संसार भवजल तों पार उतारा करनहार समर्थ गुरु धन धन सतगुरु शब्द गुरु चवर छतर तखत दे मालिक गुरताग दी तेज शब्द निरंकारी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ी साध संगत जीओ गुरु खालसा जीओ आप समूह गुर सिख संगतां सेवा पंथी संप्रदाय दे अस्थान डेरा हरी भगतपुरा माडल टाउन हुशियारपुर विखे जो इस वेले मौजूदा महापुरख महंत बाबा प्रतपाल सिंह जी समूह इलाके दियां संगतां दा सहयोग लैके नाम बाणी दे रस्तिए महान परोपकारी सेवा पंथी बाबा हरि सिंह जी बाबा भगत सिंह जी जिन्हां दी पावन याद विच जो 1964 विच मिठा टिवाणा पाकिस्तान विखे परोपकार दे कारज करदे आं बाबा भगत सिंह जी ब्रह्मचलीन हो गए उपरंत महंत बाबा जवाहर सिंह जी खूंडे वाले लंगर दे धनी उन्हां महापुरखां ने महापुरखां दी याद विच इस समागम दी परंपरा चलाई। 1947 तों बाद इस स्थान ते सेवा दा केंद्र स्थापन किया नाम सिमरन बाणी दा प्रवाह सेवा पंथी साधुआं दी मर्यादा अनुसार सब जीवां विच गोबिंद रूप जान के सेवा दे कार्य आरंभे उपरंत बाबा जमीत सिंह होरां भी इस स्थान की सेवा करते रहे उपरंत महंत बाबा तारा सिंह जी जो सेवा की मूर्त हुए हैं इलाके दियां संगतां दा सहजलो के लैके ये सुंदर सत्संग दीवान हार बनाए संगतां नूं गुरबाणी दे नाल जोड़िया कथा कीर्तन दे प्रवाह चलाए लंगर हाल बनाए उपरंत महंत बाबा प्रतपाल सिंह होर ने भी जो पहला हाल छोटा सी उस बहुत बड़ा आलीशान दरबार हाल बनाया है जिस विच अखंड पाठ साहिबां दा प्रवाह चल रहा है दर्शन करदिया हिरदे की ठंड पैंदी है। सो प्यारे ये सब नाम का प्रताप है ये नाम सिमरन की बात मिलती कितों है पूरे गुरु पास
हुणे आपने गुरबाणी दा कीर्तन मिठा टिवाणा विखे संगीत विद्या प्राप्त कर है विद्यार्थी बच्चियां पासों सुनिया है शब्द सतगुर आयो शरण तुहारी मिला सुख नाम अर शोभा चिंता लाहे हमार सेवा पंथियां दे बानी महापुरख भाई कन्हैया जी दे दर्शन करो बचपन विच ही जिन्हां दा जन्म स्थान पिंड सोधरे विखे होया है बड़े अमीर घराने विच उन्हां दा जन्म होया है पर अमीरी दे सुख बचपन विच त्याग के घर विच सुंदर पलंग विछे रह जांदे जिथे भी सुनदे कि अज इत्थे महापुरखां दा सत्संग है कीर्तन समागम होना है बाणी दी विचार होनी है उत्थे पहुंचना ते बैठ के सत्संग सुनना संत बंस जी संत भाई ननुआ जी होए हन बड़े करनी वाले महापुरख उन्हां दी संगत करनी महापुरखां तो भी उन्होंने ये प्रश्न किया कि गोबिंद की प्राप्ति किवें होवे मैं महापुरखां ने यह वचन किया कि गोबिंद की प्राप्ति करनी है तो राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे गोविंद सिमरन करना है तो ध्रुव भगतवांग के प्रहलाद भगतवांग माया का मोह त्याग के अडोल परमात्मा की भक्ति करो सिमरन विच मन जोड़ो फिर गोविंद की प्राप्ति होएगी अंदर प्रेम जागया आखो सतनाम श्री राम उस समय दे जो अमीर एक सूबेदार से उन्हां दे नाल भाई कन्हैया जी दे पिता जी फौजी ठेकेदारी दा काम करदे सन भाई कन्हैया जी दे पिता जी दे बचपन विच ही उन्हां दे पिता जी गुरपुरी प्याना कर गए फिर वो ड्यूटी भाई कन्हैया जी नूं मिली पर कोई समा वो ड्यूटी देंदिया होया गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी वैराग माई बाणी सुनी तां उस अमीर वाले जो कारोबार सन उसनों त्याग के शाही तंबू नु छड़ के सारा समान ड्यूटी ते समान छड़ के आप जंगलों में तुर गए कि गोविंद की प्राप्ति होवे गोविंद की प्राप्ति संत रतनमाला विच लिखा है कि 20-25 दिन इस तरह जंगलों विच विचरदियां बीत गए
ਬੜੀ ਵੈਰਾਗਮਈ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੈਰਾਗਮਈ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਾਧ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰਿਆ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲ ਮਨਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਰੋਲੀ ਵਿਖੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਹੀ ਸੁਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ ਮਤ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾ ਅਰਪਣ ਕਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਸੋਝੀ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿੱਤ ਲਾਏ ਮਨ ਚੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ ਹੋਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਫਰਮਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੀਤਾ ਬਾਕੀ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਲਿਆਓ ਹੋਰ ਲੈ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਰਤਿਆ ਫਿਰ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੜੇ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਕੇ ਡੋਲ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਤ ਅਡੋਲ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਘੋੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਖਰਖਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ
त्रिकालदर्शी हो, पतत पावन हो, मुक्ति दे दाता हो, कृपा करो दास नु नाम दान दो, गोविंदी प्राप्ति हो जाए, मनुखा जन्म सफल हो जाए। तो उस समय गुरु तेग बहादुर जी ने उपदेश दिता कि गोविंद तेरे अंदर ही है, गोविंद नु लभण दे लई जंगलां विच जाण दी लोड़ नहीं है। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। भाई कन्हैया जी, गोविंद सर्वव्यापी है, वो सर्व निवासी है। जल थल महल पूरिया, रविया विचवणा, सारे संसार मंडल दे जी जनता दे अंदर व्यापक हो रहे। भाई कन्हैया जी, वो तेरे अंदर भी है, गोविंद तेरे अंदर भी है, तो ही संग समाई। पर उस परमेश्वर नु अनुभव यों करना है कि पोहप मध ज्यों बास बस्त है, मुकर माहे जैसे छाई। पोहप कहंदे ने फुल नु, फुल विच खुशबू होंदी है, ए हिंदी दा शब्द है। पोहप मध ज्यों बास बस्त है, जे फुल विच खुशबू है, वासना है, महक वसी है, दिसदी नहीं महक पर दूरों ही प्रतीत होंदी है कि इस फुल विच गुलाब दी खुशबू दी सुगंधी आ रही है। ये गेंदे दा फुल है, ये चंबेली दा फुल है, बहुत ही सोहनी महक है। फुल दे जरे जरे विच महक है, जिसकी नहीं पर दूरों अनुभव होंदी है। पोहप मध ज्यो बास बस्त है, मुकर माहे जैसे छाई। जो मुकर शीशे किया जाता है, दर्पण भी कहते हैं शीशे नु, दर्पण माहे मो देख मुख जैसा, नामे का स्वामी बिठल ऐसा। जिवें शीशे विच मनुख अपना मुंह वेखदा है, तो शीशा कितना कठोर है। जब मनुख शीशे वाल देखदा है, उसका जो प्रतिबिंब है, परछावा है मनुख दे शरीर दा, वो शीशे विच चलिया जांदा। मुकर माहे जैसे छाई, जो शीशे विच बंदे दा प्रतिबिंब परछावा दिसदा है, वो पकड़िया नहीं जांदा पर प्रतीत होंदा है। जो शीशे विच मनुख दा प्रतिबिंब सजे ही चलिया जांदा है। जे फुल विच खुशबू जरे जरे च व्यापक है, जिस दी नहीं पर है, तिवें तैसे ही हर बसै निरंतर, घाट ही खोजो भाई। हे भाई, घाट ही खोजो, अपने अंदर ही हृदय विच वेखो, वेखो। सो अंतर सो बाहर अनंत, घाट घाट व्याप रहा भगवंत। ओ पार ब्रह्म परमेश्वर हरेक घटा विच व्यापक। गुरु अर्जन देव जी का पावन वचन है, सगल वनस्पत मह बसंतर, सगल दूध मह घिया, ऊंच नीच मह ज्योत समाणी, घट घट माधव जी। भाई कन्हैया जी, घट ही खोजो, बाहर भीतर एको जान हो, यह गुर ज्ञान बताई। बाहर भी सारे परमेश्वर है, भीतर अंदर भी परमेश्वर है, सारे व्यापक है। यह ज्ञान गुरु दसदा है। सो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने एक ज्ञान दिता, और फिर मेहर की दृष्टि की भाई कन्हैया जी ते,
भाई कन्हैया जी नू अंतरात्मे निरंकार अकाल पुरख के दर्शन हो गए, घट घट व्यापक दिस रहा है। फिर वचन किया गुरु तेग बहादुर जी ने, भाई कन्हैया तुहानू गुरु नानक दे दरबारों परमेश्वर दे नाम सिमरन भगती दा कुणका मिलिया है, ते सिखी दी दात मिली है, ते वंड के छको जाओ संसार मंडल दे अंदर विचरो ते गुरसिखी दा परमेश्वर दी भगती दा प्रचार करो। भाई कन्हैया जी कहन लगे, महाराज मेरा चित करदा है तुहाडे दर्शन करदा रहा, तुहाडी हजूरी च बड़ा आनंद है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहन लगे, ए शरीर गुरु नहीं शब्द गुरु है, ते शब्द सारे व्यापक है, तुसी शब्द दे पुजारी बनना है, जो वचन कीता है वह मनना है, एक गुरु दे कोल रहना है। तो भाई कन्हैया जी सत वचन कह के आशीष लै के संसार मंडल दे अंदर विचरण लगे। कवा नाम स्थान ते लोड़ वेखी ते सेवा दा केंद्र बनाया, उथे सेवा स्थान बना के पानी दी बड़ी थोड़ सी, एक हरो नदी तो पानी दा घड़ा भर ले आना, ते जिथे आम संगत दे पब्लिक दे लंघन दा रहा सी उथे एक अड्डा बना के उथे आए गए नूं पानी पिलाउणा, ते होर सेवादारां नूं नाल जोड़ लिया। इन्नी वड्डी सेवा होई कि सेवादार दी सराह बन गई, अस्थान बन गया, 150 मंजा बिस्तरा 150 पानी दा घड़ा हर समय भरिया रहे। आए गए अभ्यागत नूं कोई मुसलमान आ जाए तां वी उस नूं जी आया आखणा, हिंदू आ जाए, कोई सिख, कोई होर किसे जात दा बंदा आ जाए, सब नूं इको जिहा प्यार। इस तरह सेवा करदिआं फिर कलगियां वाले पातशाह दी हजूरी च आनंदपुर साहिब विखे जंगे मैदान विच सेवा प्राप्त होई। उत्थे भी कलगियां वाले पातशाह ने किया, भाई कन्हैया मोर्चे लगे हुए हन, ते सिंह प्यासे बैठे हन, सूरमियां नूं पानी पिलाया करो। सत बचन इन्नी आख्या महाराज, सामने वैरी दर वलों छूंकदे तीर गोलियां शरीर नूं पाड़ देंदे हन, मौत सामने है पर नहीं, जाऊं तो प्रेम खिलण का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। सो भाई कन्हैया जी इस तरह सेवा कर रहे हन, मैं समाप्ति करा। ए है गुरु दे चरणा विच आके, सतगुर आयो शरण तुहारी, मिला सुख नाम हर शोभा, चिंता लाहे हमारी। चिंता की थी कि गोविंद की प्राप्ति नहीं हुई हो जाए, तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने उपदेश दे के ये चिंता मिटा दिती, गोविंद दे दर्शन करा दिते, ते नाम रंग च रंग दिता, कि ऐसा रंगिया कि जंग मैदान विच भी पानी पिलाउंदिया होया गोविंद वाहिगुरू ही नज़र आ रहा है। जिथे मचे हुए जंग विच जख्मियां नूं सिंघां नूं जिथे पानी पिलाउंदे, उत्थे मुसलमान जख्मी होया पानी मंगदा, तां भाई कन्हैया जी उहदे मुँह च वी पानी पा रहे हैं। सिख कहण लगे, भाई कन्हैया ये तां दुश्मन है, वैरी है, इन्हां नूं पानी क्यों पिला रहे हो? तां भाई कन्हैया जी ने उत्तर दिता कि जब ते साध संगत मोहे पाई, ना को बैरी नहीं बिगाना, सगल संग हम कौम बनाए। ये गुरु तो सानू सोझी प्राप्त हुई है कि कोई बेगाना नहीं, कोई ओपरा नहीं, कोई वैरी नहीं, सारे विच गोविंद है। मैं तो गोविंद नू पानी पिलाया है। कलगी भर पातशाह दी हजूरी विच भी शिकायत पहुंची, तो उस समय भी भाई कन्हैया जी ने
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ ਪਿਲਾਵਾਂ ਪਾਣੀ, ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਸਾਈਂ, ਤੁਰਕ ਅਤੁਰਕ ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਸਾਂ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਹੱਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਲਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਡੱਬੀ ਹੱਥ ਫੜਾਈ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਲਮ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਲਾਈ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰਿਆ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੇਵਾ ਪੰਥ ਚਲੇਗਾ, ਸੰਪਰਦਾ ਚਲੇਗੀ, ਜੋ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਰੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੋ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਸਦਕਾ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਨਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਲੱਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ, ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਬਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਗੁਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਗਰਲਜ ਕਾਲਜ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ, ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆਲੇ 'ਚੋਂ ਸੰਤ ਭਾਈ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਸੰਤ ਭਾਈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਸੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮਨਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਹਿ ਮਿਲੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਤਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜੋ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।